आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथो ताह कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहु महाराजन को दीजत अनंत दान, कहु महाराजन ते छीन चित लेत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

रोज ही ए गल लै के बह जांदी है, रोज ही पुछदी है, पर जेड़ियां ए सच्चियां गल्लां इहदा पति इहनू दसदा है उहनां नूं ए मखौल करके समझ

जो पति ने सचियां गल्लां कहियां, जो परम पिता परमात्मा दा हुक्म उनू जो ज्ञान विच आया होया सी रोज दसदा, पर ए सोचदी है तेरे नाल मखौल पिया करदा, एवें हासा करदा है, इन्हां सचियां गल्लां नू ओ हासा करके जानदी है। पर एक दिन उदों पता लगा

एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेडन वास्ते जा रहे सन। रस्ते विच कलयुग मिलिया। राजे परीक्षित ने आख्या, तेरा मेरे राज विच कोई कम नहीं। ते कलयुग कहन लगा, महाराज हुण मेरा पहरा आउण वाला है। तुहाडे तेज प्रताप अगे मैं ठहर नहीं सकदा, पर मैनू स्थान जरूर दिओ। कहिंदे ने राजा ने आख्या कि तू या ते सोने विच वास कर जिथे धन दौलत होवे, जां फिर जिथे पाप कर्म होण उत्थे तेरा वास है। इन्नी कहण दी देर सी कलयुग कहिंदे ने अलोप हो गया। राजे दे मुकुट दे विच सोना लग्या सी, उहदे विच वस गया। ज्यों सिर ते आ के बैठिया, मत बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। तुरे जा रहे सन, रस्ते विच की वेख्या, एक ऋषि तप कर रहे ने। राजे ने सोचिया मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार कीती, क्योंकि ओह ते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहण लगे, मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इहने उठ के नमस्कार नहीं कीती, इहनू मैं इस गल दा मजा चखावांगा। कहिंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते ओह मोया होया सप उस ऋषि दी गल दे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलणगियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्र नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उन्हें आके अपने प्यो दे गल विच्चों ओह सप लाया, नाल ही उन्हें श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तो सत्तवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई। पश्चाताप कीता कि ऐ राजन, तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहिंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इहने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तों बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दसिया, किसे ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियां दी सलाह होई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया ते मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जावे, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तां शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जावे। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों उह समा लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया। राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों उह समा पुज्जा, आ के चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक इत्थे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लैके, गुलदस्ता लैके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया, इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। ए मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जाके फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओ फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इस नूं आई। फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया, इसने कहण लगा, मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ओ खुशबू नूं लैण वास्ते कहिंदे ने, ज्यों ही नक नाल इहने
ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਿਛਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ ਉਸਨੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

देव जी नाम जपदिया जपदिया ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानिया दी अवस्था प्राप्त होई के ठाकरा दे इशनान करन ले जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा।

तारीफ करते ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरशां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहिंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

कीर्तन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

रंग चाड़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालिक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने भाई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया। पर

उचारिया होया इस शब्द दे विच इंसान नूं गुरु साहिब जी समझांदे हन।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आ

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया है भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है फिर क्यों ना

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया होया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, या कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, एक गल वखरी है। सात संगत इस दुख च साहबा ने कहा है ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा है। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हिड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने। इह कन्नां तों वी कमला, इह नासां तों वी कमला, अखां तों वी कमला, जीभां तों वी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों वी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही दोख तों ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिए। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिए। ओ संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल। चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां।
तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, अज तेथों बिछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाएंगे। तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषा तो ते दुखा तो। साध संगत से उपरीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, ए भी तेरी रहमत। जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लग के, ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप। हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते, हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू। नानक मांगे दान प्यारे, मैं तो यही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी, सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है। बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू, जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है। महाराज कहन लगे फड़ लो, सिखा ने जाके घेर लिया फड़ लिया दा। रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया। साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू, मूंह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी, मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा, जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ, कौन है तू। कहन लगा जी पठान पुत्र हां। किवें आया सा इधर के महाराज एवें बिपता दा मारिया आ गया। सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ इहदी पुछो इहदी बुकल विच की। अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ। हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे, जो कुछ मैं अंदरों हां जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे, क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है। जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा, बल्कि वह तां इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं। जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है, बल्कि इथों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे। छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नू दसना चाहुंदा है, लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है, कोई किसे नू नहीं दसदा। सजना तो गहरे सजना नू इथों तक पति पत्नी एक दूजे नू अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे। कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने, परदे वाली गल ही कोई नहीं। तरला मारन लगा कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे। साहिब मुस्कुरा पए, साहिब जानदे ने दा परदा की है, परे तां आप परदे ढकण वाले ने, इहदा इह परदा ला के उहदा दोई जानी परदा कज्जण ते आए ने। कहिंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस इहदी चादर ला दे। रोण लग पिया, सिखा ने एक नहीं सुनी, उन्होंने चादर ला दिती। ओदी बगल च निक्का जिहा मरियल जिहा कुत्ता पाया है, ओदी संगी ते उन्हें हाथ दिता है, कुत्ते दीआं अखां बाहर ने जवान बाहर नूं आई मर रहा, छड़ दिता कुत्ता थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी, सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों की गल है बोलदा क्यों नहीं। कहन लगा महाराज कई दिनों का भुखा सा, देसों परदेस आ गया सा किरत करन वास्ते, इत्थे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है वे किसे गरीब नू रोटी कित्थों मिलनी, इत्थे तां लुटेरा खा सकदा डाकू खा सकदा, गरीब दी कोई जा नहीं, या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने खा सकदे ने जिन्हां ने उस अफरा तफरी का कोई असर नहीं लिया, जिहड़े उस अफरा तफरी नू मिटाउण वास्ते तुले होए ने तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने। पातशाह मैं गरीब, उन्हां नू फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी, ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उंज नेड़े नहीं लगण देंदे। मैनू मुसलमान पठान नू रोटी खाद्या कई चिर हो गया है, मंगणा मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है,
जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहती है लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तिरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छैदा तिरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिनों का भुखा का मारिया अज मैं ये फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, तो यह मरियल जहा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता था कितने नुकरे बह के इसे चब लव, इसे भुन के जिमें भी हो खा लवा ते अपने पेट की अग बुझा लव। साहब कह लगे लंगर छकाओ सोहने बस्त्र पुआओ। कह लगा महाराज मैं थोड़ा दुश्मन हो सकना दोखी हो सकना, लंगर छका रहे हो तुहाडी बड़ी कृपा है क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए कहन लगे नहीं इत्थे भाई घनैये वर्गे बेअंत ने जिहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्होंने समय च टकिया च रसीने मिलते सन। साहबा ने रुपया रोज का ला दिता, कह लगे इन गुजरान मात्र रुपया रोज का दो। कह लगा साहब जी किस गल का तुम रुपया रोज मैं किस गल का बख्श दे। साहब कह लगे भुखा का मारे हैं गरीबी का मारे हैं देसों परदेस आया कमाने वास्ते तेरे बाल बच्चिया वास्ते तेरी किरत मात्र कि महाराज मैं करांगा की। साहब कह लगे जो तेरा जी करता है इतो कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर ली ना किया जाए ता भी कोई डर नहीं। गद गद हो गया गुरु किया रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड़िया गुरु का डर नहीं छड़िया सेवा च लग गया। इतनी सेवा की गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड़े। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया पैसे भी हो गए हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बरादरी वालिया ने तेरे बंदिया ने वेख लिया तेनू काफिर कहणगे तेनू दोषी करार देणगे। वह कहिंदा नहीं दोष निकल गए जीवन विचों जिसने खुदा नाल जोड़े है इना पर उपकार ते इनी समदृष्टि बख्शिश की थी है। जे उन्हें मेरे नाल वैर नहीं कमाया उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया ते मैं इनू छड़ के होर किदे कोल चला जावां इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। यह सच जानना एक पठान की गल नहीं, साढ़े किन्ने ही दुख ओदी एक भुख का दुख महाराज ने दूर किया हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणा तो। साढ़े किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे, गुरु के सिख का की फर्ज बनता है। वह सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तो सरदारियां पाई ने भुखा मिटिया ने माण मिले है भरम मिटे ने दूई मिटी है हिरदे नू शांति प्राप्त हुई बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते ए होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा। बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान भरम निकल जान बंदे नूं चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

संस्कृत ग्रंथ जय श्री जयंत श्री आदि के नाम संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अति कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री का प्रभाव सुख अति खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव दैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आरोह विच ऋषव अते दैवत वर्जित हैं। इसका वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन के चौथे पहर गाया जाता है। राग जैत श्री विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। इसनू गा रहे हैं बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द तुक है कोई जन हर सिओ देवै जोर। अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी की रचना हर हर सिमरो अगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सिओ देवै जोर।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे नु इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी, ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम यह कीता, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैश चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश की।

0: चंदले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों हुंदा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नानदेव जी दास दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उन्नी टेक जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है कि इंसान चंगी तरह बोल सकता है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखती है। फिर पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

जिथे सारिया भगतों नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहिंदे ने हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहिंदे ने जदों देवतिया ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहिंदे ने हे मालक

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ड़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता

पुत्र नू पकड़ लिया है। पापी राजा जुल्मी राजा सिंगा ते कहर टांदा है। मां दा दर्द उठिया रहा ना गया राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी ओनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए असी तेनू छड़ रहे हां सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं। मेरी दस्तार वल तक मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा। कौन कहिंदा है ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है। वो कहिंदी है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू। ओ मेरी मां नहीं हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती क्योंकि सिंघां दियां मामा इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं। क्यों जान गुआंदा है ये तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी। भुल गई है याद कर सिंघां दियां मामा कदों सिदकों डोल दियां ने ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया। ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता बुढ़ी मां वार दिती चारे लाल वार दिते सारा सरवंश वार दिता ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे ने।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साला

सदा संभाले। पर जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता। हर हर जन दो एक हैं, बिप विचार किछ नाहीं, जल ते उपज तरंग जियो जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन ता उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी नूं मनदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनूं दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन, गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे फिर भी उसके हुक्म विच रवे ऐसा कौन है कृपा करो सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे साई मियां मीर समा आवेगा ये जो अखर असी लिखे हैं जो अखर उचारे हैं इन्हां ते अमल भी करके दसांगे ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तो अच्छा है उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां साहब जी ने क्या अच्छा जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी ए तुसी चंगा नहीं कीता गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब नवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की गरीब नवाज किथे तुरे हो आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं किसे जरूरी काम नू चले हैं ता बाबा बुढ़ा जी ता ब्रह्म ज्ञानी सन जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी ता की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा बाबा जी ए राज राज ही रहन देना खोलना नहीं गरीब निवाज चले हो एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन बाबा बुढ़ा जी भज के गए लंगर विचों मात गंगा जी नूं सदिया माता जी साहब जी चले हन लाहौर ते सचमुच इस वार जदों जाणगे वापस परत के नहीं आणगे ऐसा केड़ा जरूरी काम पै गया इस वेले आए
ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ

मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे, चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साढ़े प्यार वाले जिहड़े नाल आए सन उन्होंने बुलाओ। वो प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे। ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर निभाया। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले गेती छुट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही है।

ना पर खोवे ते कोई कच कह देगा कोई पत्थर कह देगा। जिन्हू पता है हीरे का ओनू पता है ये दाना तो निका जे है टुकड़ा छोटा जे है मुल बहुत है। जितना वो कीमती है जिसने मुल पवाया जावे घर भर जाने। सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी गुरसिख पंथ दे श्रोमणी विद्वान धन गुरु नानक दे दर दे आनन सिख भावें असी नातेदारियां भी गिणने हैं गुरु अर्जन साहब दे मामा जी पर नहीं गुरसिखी विच तां नाता प्रेम दा है गुरु नूं समझण ते गुरु नूं मनण दा है। भाई साहब ने गुरु के बचन नूं समझे कदे भाई साहब की रचना नूं असी गुरबाणी की पूंजी भी कह देने हैं क्योंकि भाई साहब बाणी नूं समझदे ने बाणी नूं समझाउणा भी जानदे ते निरा समझण समझाउण की गल नहीं कमाउणा भी जानदे। अपने जीवन विच भाई साहब ने गुरबाणी नूं कमाया उन्हां नूं पता है गुरबाणी दे किन्ने वड्डे महत्व ने। कहिंदे ने गुरु का सच्चा बचन इहदा महत्व शायद संसारियां नूं पता ना लगे जिवें तली ते पै हीरे दा हर एक नूं पता नहीं होंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ

और शब्द की महिमा इसे तरह वेखण नूं सधारण जापदा। पर कहिंदे ने जिस तरह अपने पले कोई हुंडी का कागज चौरा पंजौरा ठौरा करके तय करके छोटा जिहा कागज जेब च पा के पले बन के बंदा तुर पैंदा। हुण हुंडी का कोई भार है? अज दे इस युग च हुंडी की किड्डी वड्डी महत्ता है। आपां ड्राफ्ट कह लैने, पुराने समय ते हुंडी कहिंदे सन। जिन्हां लोकां दा परस्पर लैण देण चलदा सी, एक थां ते बंदा पैसे जमा करा दिंदा, कहिंदा ये रकम आ मैं तैनूं दिल्ली दे जांदा, मुल्तान लैणी चाहुंदा, चुके लिजाण च 100 खतरे ने। वह रुका कर दिंदा, शाह अपने वाकफकारां वल रुका कर दिंदा, ये बंदा आ रहा है, इन्नी रकम इसने मेरे को जमा कराई है, तुसीं इहनूं दे देणी, आपां फिर हिसाब कर लवां। वह बंदा एक छोटा जिहा कागज अपने बांस के डंडे दे विचकार फसा के या अपने पले बन के या पग च बन के, वह छोटा जिहा कागज कोई भार नहीं। भाई साहब कहते हैं हुंडी का कोई भार है? कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं, कागज ही है ना। जाके क्योंकि उस रुपये का वजन सी, रुपया कागज नहीं सी उस वे। वैसे भी रुपया रुपया ही रुपये का मुल है, उस कागज का मुल कोई नहीं जब तक वह मुल पाने वाला अगे बैठा कोई। हुंडी का कोई भार नहीं, कोई मुल भी नहीं, पर जिस वेले उहदा मुल पाउण वाला आ के मिल पैंदा, उह कहिंदा ठीक है मैं जानना, जिस दी हुंडी तू लैके आया, जिस तों तू कागज लैके आया, मैं जानना। उह रकम दीआं थैलियां भर के हथ फड़ा दिंदा। अगे जाके कहिंदे ने लक्ष्मी अपार प्राप्त हुंदी है, हालांकि उहदा अपना भार कोई नहीं। तीसरी मिसाल भाई साहब दिंदे ने, कहिंदे ने हुण बोड़ दा बीज है, बोड़ दे रुख दा, बटक दे रुख दा बीज है, कितना खशकाश दे दाणे तों वी छोटा। बंदा कवे इस बीज च की धरे है, लेकिन सियाने नूं पता है इस बीज में एक बोड़ पिया है। ये बीज अगर वक्त पा के समय नाल फल पवे, इहदे विचों अंगूर फुट पवे, इस नूं हालात मिल जाण, इहनूं ठीक टिकाणा मिल जावे, ते एक बहुत वड्डा बोड़ बन जाएगा। बोड़ दी मिसाल भाई साहब ने तां दित्ती है क्योंकि सदियां लंबी इहदी उम्र है, ते मीलां तक पसार वाले रुख इस संसार ते अजे भी मौजूद ने। मीलां विच पसरे हुए बोड़ दे रुख, जिन्हां रुखां दे थले पिंड वस गए, पूरे पूरे पिंड एक एक बोड़ दे रुख थले आबाद ने। एडे एडे वड्डे रुख इस धरती ते इस वेले मौजूद ने, और बल्कि ऐसा भी है क्योंकि जिवें जिवें फैलदा है ना, यह फिर अपनियां जिन्हों दाड़ां कहने आ दाड़ियां कहने आ छड़दा, अपने टाणा का आप ही आसरा बनाई चलिया जाता है। ऐसे रुख मौजूद ने जिन्हां का असली मुढ़ लभना औखा है, कि पहला यह किहड़े मुढ़ तो पैदा होया सी। हजारा बुढ़ा ते खड़ा होया रुख, इना वड्डा पसार आखर उठिया कित्थों? बटक बीज में रव रहे हो जांको तीन लोक विस्थार। कहिंदे ने वाहिगुरु अकाल पुरख भी इसे तरह जिहड़ा तिना लोगों का विस्थार ते पसारा है, वह निके तो निके बोड़ के बीज जिनी थां विच भी उन्ना ही महान है जिन्ना त्रैलोकी विच है। ते भाई साहब कहिंदे ने शब्द की महिमा भी इसे तरह, वेखण नूं ओह बोड़ दा बीज बहुत छोटा जापदा है, लेकिन जदों ओह फैलदा है पसरदा है तां ओह कई पिंडां नूं अपनी छावें वसण दी थां दे दिंदा। इसे तरह कहिंदे ने गुर शब्द की महिमा है, गुरसिखां नूं पता है इस महिमा दा, तैसे गुर बचन सचन गुरसिखण में। गुरु के सच्चे बचना दा, इस नूं मनण वाले सच्चे सिखां दा नेचा है, इहदा महात्म सच्ची दरगाह च जाके पता लगेगा। इत्थे शायद ना ख्याल बने, इत्थे शायद विश्वास ना बने कि गुरबाणी भाई जी कादे लई पढ़दे, कादे लई विचारी जावे, कादे लई इस नूं समझिया जावे। जिहड़ा पढ़दा विचारदा समझदा ते कमाउंदा है ना, इहदा महात्म तां भाई साहब कहिंदे ने हरिद्वार जाके प्रभु दी दरगाह च जाके पता लगेगा कि किन्ना।

श्रेय लगेगा, अगे वो वधेगा, आत्मक उन्नति वह करेगा जेड़ा गुरबाणी नूं खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लिया। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दिती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तो समुद्र की गहराई नहीं पता लगी, ते जो कुछ धरती से उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजा जिहड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुद्र दे अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक के इस वेले तो बंदा अपनी खाद खुराक के मामले में भी समझता ना, धरती तो पूरी ना हुई तो समुद्र दीआं तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुद्र दीआं तहां च पाए जाण वाले कितने ऐसी किस्म के पौधे ने जिहड़े हेठा तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। यह तो शरीरक लोड़ां साडियां कि असीं उधर झाकणे, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती ते वरतों विच आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुद्र दीआं तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात ते समुद्र दी तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आउंदे ने। आपां इक मोती की गल करी, सिप्पियां समुद्र दे कंढियां ते पईयां रुलदियां, उन्हां च मोती नहीं होंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल का मतलब नहीं होंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं होंदा। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणियां उत्ते वड्डे आकार की, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी का जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनूं कहिंदे ने, वह अपनी लब तो अपने अंदर आए हुए पानी के कतरे या रेत के दाने अपना लुआब लपेट के मोती बना देता। वह मोती ना केवल सिंगार के काम आया, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दियां कई बीमारियां कट के दवा का काम भी किया। भावे गल वक्री, अज के वैद चुके कीमती सिप्पियां ही पी के ते मोती कह के वेच देंगे, सिप्पी का ही कुछ तो करते हैं, कहने भी तो उस लब तो ही बने हैं जिस तो मोती बनता है। लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी के अंदर बनने वाले मोती की कीमत बहुत ज्यादा है, राजे महाराजे उसका मुल पाते सन, पर हर कोई तो उस मोती ना ले सकिया। आखिर किसी ने पानी के अंदर कुद के पानी के अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तो बड़े साधन हो गए, पुराने समय च सह रोक के टुबिया मारते, सह रोक के इन्हें अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर सह रोक के घड़िया बधी और समुद्र दीआं तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन, लभ के लिया के उहदे चों खोज के, फिर हर मोती चों सिप्पी नहीं लभना, किसे किसे मोती चों लभना, किसे किसे सिप्पी विचों मोती लभना, उहनूं विन के मुल पाउणा जाणदे सन। इह इक मोती दी गल नहीं, भाई साहब तां कहिंदे ने समुद्र च बड़ा कुछ है, पर उह मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां दी खोज दी सिटे की फल की गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर जी कहिंदे ने मोती बहुत होंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डड्डुआं नाल ही कम सारदे ने। हंस दी क्योंकि खुराक मोती है, वह सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुन के लियांदा है, तह विचों टुब्बी मारदा है, चुन के लियांदा है, उस सिप्पी नूं खोलदा है और बड़ी औखी खुलदी। यह जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर पर इस मोतियां दे जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्दे ने, मर जांदा है सुक के ते विचों मोती कढ लैंदे, पानी दी थुड़ तों मर जांदा, सुक जांदा, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर दे मूँह विचों उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है ते कढ के निकल लैंदा, उहदी खुराक है। जे उन्हों सिप्पिया चो डिगे मोती लभ जाण ते उहदे पार, उह तहां विच जांदा है, मान सरोवर दीआं तहां च जाके मोती लभदा है, उहदे बिना उहदा जीवन नहीं। हंस दा जीवन मोती है, इसे तरह सिख दा जीवन नाम है, ते नाम इस नूं मिलदा है बाणी दी खोज विचों। कहिंदे जिवें समुंदर विच सरोवर विच बेअंत पदार्थ पए होए ने, मोती भी उत्थे मौजूद है। हंस गहरी टुब्बी मार के सुआस रोक के औखा होके जरूर विश्वास रखो नेचै प्रसाद पावी अपने छकन जोगे मोती लभ लिया। कहिंदे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सोध, पर्वतां विच हीरे भी होंदे मोती भी होंदे ने, पर्वतां नूं खोज के उन्हूं खनवारा जिहड़े
ਥਾਣਾ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਹਰੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੀਰਾ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ, ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੜੀ ਚਿੜੀ ਕਲਾ ਚਲੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਜੜਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰਾ ਜੇ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਣਵਾਰਾ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਕਪੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਤਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੈਂਟ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੁਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੱਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁੰਘਣ ਜੋਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਖਣਵਾਰੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਵਰ ਜੀਵਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख